0: मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया।
1: Hi, this is Nakash Aziz and you're listening to Radio Sarang 107.8 FM.